0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक। हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ दीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushmann Khurana and Sada Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhool gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Woh dekh, border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Thappi.
6: Main sochti si ke apna kabaddi di team bana li.
7: Tu palwan banna, palwan jam.
8: Written and directed by Jaydeep Vading. नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
9: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
10: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

ब्रदर्स रेंज रोवर, हाँ जी हाँ जी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर। रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना हाँ जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
3: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी न्यू दिल्ली विच भी आई एम एडवाइजर
2: था पी। मैं सोचती सी कि अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
3: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
4: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनेन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
5: रेडियो हांजी 1674 AM।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
2: तू पलवान बनना, पलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप विडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी।
4: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
5: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
6: Desh bhakti to yaad aa gayi.
7: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
4: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
8: Udhe ek border chal rahi hai.
4: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
9: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानूं चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटां ते घट फीसां नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल, इट्स योर बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
5: और जो हुकम मेरी सरकार
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.
3: Thank you.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

जी हाँ भाइयों और बहनों, बिना का गीत माला में आप सभी का स्वागत है। ये पहला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, धीरे धीरे चल, फिल्म है लव मैरिज। इस गीत को बोल दिए हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और फिल्म में काम किया है देवानंद, माला सेना, अभी भट्टाचार्य ने। साल 1959 में आई इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 16748।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: जीती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी,

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Oh, ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Yaar, tu itthe niche thi aake pakka bhi ho gaya. Ki jugaad laya hai?
6: Jugaad nahi. E hai 8 saalan to bhi vadda tujurba. Bansal immigration da. Jinnah ne vadiya course vich admission karai. Ate फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर ता दे बांसल इमिग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
7: रेडियो हां जी 1674

0: हाँ भाई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच भी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
6: थापी, मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
7: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
8: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वड़िंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618, हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Radio.
4: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
7: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: यू आर लिसनिंग
5: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
4: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनों च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
2: सत श्री अकाल इस बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.
3: Thank you.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जावत जन मैं मर है।
1: जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तर है संसार।
0: जो तुम भाने तिन पर जाता नानक उंजन चन पराता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने।
0: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा।
1: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत।
0: पावे तिस लै लड़ लाए थान थनंत रहा समाए।
1: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी।
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज सलोक।
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रशर नागती कर प्रसाद गुरुदेव। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर पूरख मन माहे।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याज सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याका तब लुभावे।
0: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी जय।
1: जय प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने।
0: जय प्रसाद तेरा धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जप्त दर गय मान पावे नानक पत सेती कर जावे।
0: जय प्रसाद औरो कंचन देही लिवलाव तिस नाम स्नेही।
1: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभ ठाकर प्रभ ताके।
1: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे।
1: जय प्रसाद आबू खन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय।
0: जय प्रसाद असु हस्त असवारी मन तिस पर को कबू ना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरो प्रभ अपने मना।
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई।
1: सहते आ जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है।
0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है गो प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सहज समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू पट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप।
0: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है।
1: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच।
0: जय प्रसाद सब कीत होए नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ आप गावे सो हर गुण गाओ।
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास।
1: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए।
0: सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया।
1: जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ।
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ छे श्लोक।
1: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: साधक संग मखूजल होत साध संग मल सगली को।
1: साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सो ज्ञान।
0: साधक संग बुझे पवनेरा साध संग सुबहुत नवेरा।
1: साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कुपर जतन।
0: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी।
1: साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल।
0: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा।
1: साध संग हुए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन।
0: साधक संग न कतहु धावे साध संग अस्तित मन पावे।
1: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।
0: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनी।
1: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बींगा पैर।
0: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा।
1: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तजै सा बाप।
0: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई।
1: साधक संग न भूतावे साधक संग सदा सुख पावे।
0: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह।
1: साधक संग बसै थानूचै साधु के संग महल पहुंचै।
0: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म।
1: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान।
0: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे।
1: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे।
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा।
1: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन।
0: साधक संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम।
1: साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल।
0: साधक संग कुलूक तहर है साधक संग नर पर हर है।
1: साधक संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछर तहर मेला।
0: जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे।
1: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक कुदरै साध सुन रसै।
0: साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ।
1: साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है।
0: साधक संग लगे प्रभ मीठा साधु।

0: क्या संगत गाड़ी था
1: साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मेटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग
1: साध की महिमा भेद ना जाने जीता सुने तेता बखियाने
0: साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूच ते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख
0: दम ज्ञानी कह दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक जो बसदा को खोदै को चंदन ले
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सही स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही बिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्म ज्ञानी अहबो त्याग
1: ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस गुण भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम आठ आठ श्लोक
1: और तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: मिथ्या नाही रसना परस मन मैं पीत निरंजन दर्स
1: पर तेरे रूप न पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत
0: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
0: इंद्री जित पाई दोख से रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
1: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न
0: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल भात कीर्तन संग राचा
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परमगत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म
0: सात संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सुपंड जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म में सुध है
0: राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल
1: सोमवार ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गाथ होए साध संग पावे जन को कुए
0: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे
1: सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: कहो जुगत किते ना पाईए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
0: सातु नाम तिस नदरी आया दात संतर भाय तिन पाया
1: सदा नित नित हर जान सूदास दरगह प्रवान
0: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर
1: सगल संग आत्म उदास ऐसी जोत नानक रामदास
0: किया गया तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत नहीं बियोग
0: ऐसा स्वन तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
1: तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
0: जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ परख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राखे तैसा तिनाओ
0: आपे कन करावन जोग प्रभावे सुई फन होग
1: असरे आप हुए अंतरंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश
1: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनक प्रकार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
0: कई कोट नवत नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
1: कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है
0: कई कोट माया सुरमा है कई कोट परदेश भरमा है
1: जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिजती जोगी कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पात्र बिरखन पजाए
0: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र
0: सुमदरी अपने सूतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
0: कई कोट के रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
0: कई कोट जा किन प्रसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा
1: सब ते नेरा सब होते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी
1: कई कोट जन मै जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
0: कई कोट बैठती खाए कई कोट खाले तक पाए
1: कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत
0: जय जय भाणा तय तय राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
1: कई कोट दर्शन प्राप्त प्यास तिन को मिलियो प्रभ विनाश
0: कई कोट मां गए सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको है आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
0: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार कई जोत कीनो विस्तार
0: कई बार पसरो पासार सदा सदा एक अहंकार
1: कई कोट कीने बहु पात प्रवते हुए प्रम माहे समात
0: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक पब सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास
0: कई कोट तत के बेते सदा निहारे उसको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे
0: कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सहि समावे
1: अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
1: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: करन करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग
1: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
0: हुक्मे तार अतर रहा वै हुक्मे उपजै हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
1: प्रभावे मन गत पावे प्रभावे ता पाथर त्रावे
0: प्रभावे बिन शास्ते राखे प्रभावे ता हर गुण
1: प्रभावे ता पथ तुधारे आप करे आपन बिचारे
0: दोसरिया का स्वामी खिले विकसे अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे
0: हो मानक ते क्या होया वे जो तिस पावे सोई करावे
1: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे
0: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचे
1: भरमे भूला देह दिसतावे निमुख माहे चार कुंट फिरावे
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले
1: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जा जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल ददस पुलटावै
1: जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा नागने जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई
0: इसका बल नाई इस हाथ करम करम सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
0: कबहू ऊंच नीच में बसै कबू शोक हर खरंग हसै
1: कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू उब काश पयाल
0: कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार
1: कबहू नृत करै बो पांत कबहू सोई रह दिन रात
0: कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रवाल
1: कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पे खारी नीच का साजा
0: कबहू अब कीर्त में आवे कबहू भला भला कहावे
1: ज्यो प्रभु राखे तिवही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोहन धारी लावे ध्यान
1: कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहू कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भर में भरमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रा पावे तिवै नचावे
0: ज्यो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोई
1: कबहू साध संगत ए हो पावे उस स्थान ते बहर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम ते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग
0: ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समान
1: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुरबान
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
1: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत सो हो वित बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बो जोन भरमावे
1: धन भूम गा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंता होए कर गुर बावे तृण समान कछ संग न जावे
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी तरमराए तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दर गए परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक यत्न करा तुम निद्रवे हर दर गए को कैसे गवे
1: आप सुको जो भला कहावे तिसह भलाई निकट न आवे
0: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए
0: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन सुमाए तब लग धर्म रह देश जाए
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटा
0: सैस कटेला कोट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे
0: बिना संतोक नहीं को राजा सुपन मनोत बिता सब काज
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव
1: करन करावन करने हार इसका हाथ कहां बिचार
0: जैसी दिष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए
1: जो किच कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हो कै संग
0: पूजे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक
1: मरन बिन सह आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए
0: आप उपदेश है समझे आप आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ हो करने हार
0: ते बिन कहो किच होए थान तनंतर एक सोए
1: अपने चले तब करने हार कौत करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने विख्यानी
0: सच सच सच सब की ना कोड मदे किने विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर पार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी स्वर्ण बखानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत
0: मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ बारह श्लोक
1: संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संत के दुखन हार जा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सुबाते ही
1: संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर है
1: संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन कागजों लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को छले
0: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए भीगत पाहे
0: संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिंटिक न पाई
1: संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी आर दीन
1: संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै कान हिमित
0: संत के दुखी को डान लागे संत को दुखी को सब त्यागै।
1: संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी,
0: संत का दुखी जन्मै मरै, संत के दुख ना सुख ते टरै,
1: संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अज बीते टूटै, संत का दुखी किते काज ना पहुंचै,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीजा पे ही खाहे,
0: संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत भावे ता लय उबार,
1: संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पावक इधर नहीं त्रापै,
1: संत का दुखी छुटाए किला, जो बुआर तिल खेत माहे बहिला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिठिया कहत,
1: किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगरूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी मां ना मरे ना जीवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दुख ना तृष्णा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कितन मेटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर तिसके ओहो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: सब की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरा,
1: सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेल अब करने हार, दूसर कौन कहे विचार,
1: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बडभागी नानक जन से,
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम, 8-13 श्लोक,
1: तजो सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए, सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
0: मन की टेक विधि सब जानो, देवन को एक है भगवान,
1: जिस कह दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए,
0: मारे राखे एक आप, मन कै कुछ नाही हा,
1: तिसका हुक्म बूढ़ सुख होए, तिसका नाम रह कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर पर सोए, नानक बिघ न लागे कोए,
1: उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो,
1: नैनो पिव ठाकुर कारंग, साध संग बिन सह सब संग,
0: चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा,
0: वडबागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाहे,
1: राम नाम जो कर है बीचार, से धनवंत गनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछाने, एतुत की हो सूझी जाने,
0: नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन निरंजन जाने,
1: गुर प्रसाद अपन आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: सा संग हर हर जस कह तू, सर्व रोग त्यो हर जन नह तू,
1: अंदर कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है ना लागह दुख,
0: जिसको हर पर मंचित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे,
1: जिस पर अपना कृपा कर, सो सेव कहो किसते डरे,
0: जैसा सत तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया,
1: सोदत सोदत सोद सीजिया, गुर प्रसाद तत सा बूझिया,
0: जब देखो ता सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल,
1: नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलित आप ही करै,
0: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट, आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट,
1: आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत राज थापो थाप,
0: अविनाशी नाही किछ खंड, तारन धार रिहु ब्रह्मांड,
1: अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरे तनमंत,
1: प्रभु के सेवक सगलो धारण, प्रभु के सेवक दुख विसारण,
0: आपे मेल लय कृपाल, गुर का सजो पै निहाल,
1: उनकी सेवा सोई लागै, जिसनो कृपा करह बड़ भागै,
0: नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को तुम कर मान,
1: जो किछ करै सो प्रभु कै रंग, सदा सदा सह हर संग,
0: सह सुभा होवे सो होए, करने हार पछाण सोए,
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना,
0: जिस ते उपजे तिस महे सुमाए, ओए निधान ओए सुख निदान, उन्हों बनाए,
1: आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान,
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम, 8-14 श्लोक,
1: सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जा कै स्मरण उदरिय, नानक तिस बलिहार, सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
0: टूटी गंडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल,
1: सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे,
0: रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनाशी प्रभा पे आप,
1: आपन की आकछु न होए, जिसौ प्राणी लोचै कोए,
0: तिस बिन नाही तरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम,
1: रूपवंत होए नाही मोह, प्रभु की जोत सगल घट सो है,
0: तनवंता होए क्या को गर्भ, जा सब की तिसका दिया दरब,
1: अत सूरा जे को कहावै, प्रभु की कला बिना कहतावै,
0: जे को होए बह दातार, तिस दिन हार जाने गवार,
1: जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग,
0: ज्यो मंदर को था मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन,
1: ज्यो पाखाण नाव चढ़ता रह, प्राणी गुर चरण लागत निस्तार,
0: ज्यो अंत का दीप प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास,
1: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे,
0: इन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर,
1: मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए,
0: दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तसै चितार,
1: जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरै अजान,
0: कौन बस ताई तेरा स, संग लपट रहो रस डूबी पतंग
1: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद से ती कर जाहे
0: जिस वकर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
1: ताजब मान ले हो मन मूल राम नाम हृदय महतूल
0: लाद खेप संत संचाल अवरत्या विख्या जंजाल
1: तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
0: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए
0: अनक विघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे
1: कोट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया
0: मृत्यु को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार
1: सर्ब निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे
0: सब तिसका उकरने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
1: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
0: भगत भगत सुनिए तिहलोए जाके हृदय को होए
1: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दिस साचाया कार सच वर्ते साचा पासार
1: पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
0: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
1: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: अविनाशी परम मन में राख मान की तू प्रीत त्याग
1: तिसते परै नाही किछ कोए सर्ब निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
0: सातरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
1: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
0: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
1: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवैसे
1: तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग नाना भीख करै करंग
0: नाना बिकीनो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
1: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
0: नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई
1: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ
0: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के धारे आकाश पताल नाम के धारे सगल आकार
1: नाम के धारे पुरिया सा पवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
0: कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत बूझे जे कोए नाम जप ताकि गत होए
0: आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सृष्ट सो कर नै हार अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मीना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
1: जिस मन बिसम भय बिस्माद जिन बूझा तिस आया स्वाद
0: प्रभु कै रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे
1: कोई दाते दुख काटन हार जाके संग तरह संसार
0: जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक ले गुलागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
0: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सोलह श्लोक
1: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत आवनहार
0: आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जा सुनता
0: भूजनहार को ससब होए नानक सत सत प्रव सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या
0: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस्मन प्रगटाया
1: पैते निर्भव होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
0: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई
1: बूझै बूझनहार विवेक नारायण मिले नानकेक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै
1: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
0: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक सेवक को नाम जपाई।
1: अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे।
0: प्रभ कह सेवक को न पहुंचे, प्रभ कह सेवक ऊंचे ऊंचे।
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया।
0: नीकी कीरी मैं कर राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे।
1: जिसका सास न काटते आप ता को राख दे कर हाथ।
0: मानस जतन करत बो पात तिसके करतो बिरथे जात।
1: मारे न राखे अबर न कोई सर्व जिया का राखा सोए।
0: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बिडानी।
1: बारम बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तन तृपिए।
0: नाम रतंजन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाही दिसताया।
1: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग।
0: नाम रस जो जंत पताने मन तन नामे नाम समान।
1: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम।
0: लो जाचे वादन रात प्रभ अपने जन की नींदात।
1: करह भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यो रह है समाए।
0: जो हो आहो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछाने।
1: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो।
0: आठ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से जन पूरे।
1: मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे।
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व थोक का दाता।
1: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दरसा पाप मिटावे।
0: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग।
1: आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा।
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। अठ सतारा श्लोक।
1: सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। तिसकै संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: सतगुरु सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल।
1: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुर बचनी हर नाम उचरै।
0: सतगुर सिख कै बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै।
1: सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी हे।
0: सतगुरु सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुरु सिख को जी नाल सुमार।
1: गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह।
0: आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै।
1: मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास।
0: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी।
1: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले।
0: विश्व विश्व गुर का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान।
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ।
0: सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता।
1: ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम।
0: सहर सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरुड़ भागी पाइए।
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत।
0: संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे।
1: सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तुम पतियाने।
0: पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत दिष्ट पिख है संत।
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए।
0: जे बाए कुस्तत अनेक सतपुर पूर्ण बबे।
1: काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी।
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई।
1: अनक भक्त बंदन नित कर है चरण कमल हृदय स्मर है।
0: सद बलिहारी सदगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।
1: एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए।
0: उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास।
1: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे।
0: मोह माया कै संग न लेप मन में रखे हर हर एक।
1: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे।
0: तबत माहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई।
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे।
0: पौ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे।
1: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी।
0: चित पाई चूके भउ गवन सुन नानक हर हाजा सवन।
1: निर्गुण आप सर गुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही।
0: अपने चित बाबा बनाए अपनी कीमते आपे पाए।
1: हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए।
0: पोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कै संग।
1: रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी।
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। अठ अठारह श्लोक।
1: साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार। हर हर नाम कमाव ना नानक हो तन सार। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार।
1: अवरो पासा मीत बिसार हो चरण कमल रिद में उरतार हो।
0: करम कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर रथ।
1: एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत।
0: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे।
1: जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पाव है।
0: जिस को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत।
1: जे शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी।
0: अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए।
1: सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान।
0: मन पर बोध हर के नाए दर्द स्तावत आवै ठाए।
1: ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसै हर सोए।
0: काल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
1: भाव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास।
0: सित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी।
1: तत विचार कह जन साचा जन्म रस सो काचो काचा
0: आवागुन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव
1: यों रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनको पावन चूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करू मन लाए मन बंचत नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटांबर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार
1: आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी
0: जिन दिए तस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: गुर की मातू लेहे आने भगत बिना बहु डूबे स्याने
0: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो
1: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गावो
0: गुण गावत त्रि उत्तर समैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल
1: होए अचिंत बसै सुख नाल सांस ग्रासर नाम संभाल
0: छाड़ सियान सगली मना सात संग पावे सजतना
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्त कलेख
1: एको जापे को साला है एक सिमर एको मन आहे
0: एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप पूर्ण पूरहे ओ प्राव्याप
0: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराचित गए
1: मंतन अंतर एक प्रव राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम अट उन्नीस श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा दिवो हर नाम
1: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ
1: चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत
0: एक ओट एको आधार नानक मांगे ना प्रभ सार
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
0: करे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
1: बड़ पागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत ले
1: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
1: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे की आ जानै
0: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काड है जन्म जन्म का टूटा गाड है
1: गुरपुर ऐता ते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन ते आया
0: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो
0: भग पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो तनाश नानक नाम जपो गुण तास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर यही सुहाओ
0: नेत्रो पे तरस होए मन बिकसै साधु चरण तो
1: भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावे संग
0: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए
0: प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत विछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्ब कटा करत प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत
1: साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार कुछ न दृष्टि पापुन तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरन चिन्ह जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
1: जब आपन आप अपार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
0: आपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्राप्त केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुर को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्राप्त सहज सुभाए तब शिव सख्त कहो हो कित ठाए।
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे।
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार।
0: अविनाशी सुखे अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एक तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता।
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान।
1: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
0: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भू कौन तृप्तावे।
1: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार।
0: जा अपनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
1: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन।
0: जब आपने आप उड़तार है तो सगन अपसगन कहां बिचार है।
1: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा।
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप।
1: जह अछल अछेद अपेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया।
0: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश।
1: जह एक है एक एक भगवानता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।
0: जह आपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन न हारा।
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा।
0: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार।
1: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत।
0: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार।
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखिया।
0: आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है।
1: जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप।
0: पाक का आपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी।
1: आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग।
0: जिस भावे तुसी आपन नाय लावे जिस भावे तुस खेल खिलावे।
1: बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले।
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। 8:21 श्लोक।
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार।
1: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए।
0: तुम ते पिने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए।
1: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए।
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता।
1: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।
0: जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे।
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए।
0: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ।
1: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार।
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप।
0: तत्पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सहत्यार।
1: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया।
1: जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए।
0: सेवक को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाए।
1: इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार।
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर।
1: यह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप मेले।
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद।
1: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार।
0: अमृत वचन हर की गुण गावो प्राण तनन काए हे सुआओ।
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सेंधीरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो।
1: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया।
1: मनता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते भौ जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी।
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे।
0: तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रख न हार ते आए।
1: निर्भौ जपै सगल भौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै।
0: जिस प्रभु रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार।
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट।
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल।
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम। 8:22 श्लोक।
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा।
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है।
0: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम।
1: सुन समाध अनहत नाद कह न जाई अचार ਸਾਜ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ
0: ਕਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
0: ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
0: ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪ ਅਡੂਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ
0: ਸਰਬ ਕਰਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋ ਧਾਰ ਰਹੇ ਸਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਭੀਖਣ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਨ ਜਾ ਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
0: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਾ ਮੋਹੀ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਇਕ ਅੰਕਾਰ
0: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਲਿਪਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
0: ਅੰਤਰਗਾ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਚੰਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ
0: ਸਭ ਕੇ ਮਦਲ ਪੱਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
0: ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
0: ਆਪ ਸਾਜ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਜ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ
0: ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ
0: ਜਾ ਨਾਮਨ ਕਹੇ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਈ ਸਲੋਕ
1: ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ
1: ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ
0: ਆਸ ਨਿਤਿਆ ਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਮਨ ਮੰਗ
1: ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ
0: ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ
0: ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਰਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ
1: ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ
0: ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ
0: ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ
1: ਸੰਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ
0: ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ
1: ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ
0: ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ
1: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ
0: ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ
1: ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ
0: ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਰਸ ਨਾ ਕਹਿਤੇ
1: ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ
0: ਤਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
0: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
0: ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
0: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪਵ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾ ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
0: ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
1: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
0: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
1: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
0: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
1: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
0: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਵੀ ਸਲੋਕ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माय रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस व्हाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और यहां से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: So one is all these roles that I play, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं husband था, मैं father हूँ, मैं कल को grandfather भी बनूंगा, all these roles that I play, इसमें भी I play roles. You see, role means कि हर scene जो आई उस scene में मैंने कैसे enact किया. That is my role in that particular scene. अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूं। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेज आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है, इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उसे।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ। नाउ इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग।
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल मैं उसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माय थॉट, सिचुएशन आई मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस है,
1: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: द वे आई वांट
1: टू डू इट।
0: बट वी ऑलवेज से द डायरेक्टर इज वन,
1: हु इज द डायरेक्टर?
0: ही इज डायरेक्टिंग, यू नो।
1: नाउ अगेन वी अंडरस्टूड व्हाट्स गॉड्स रोल। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, क्या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है?
0: नहीं, दैट इज नॉट देयर।
1: दैट इज नॉट देयर। सो आई कैन नॉट से ही इज क्रिएटिंग द रोल फॉर मी, He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
0: I create
1: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूं कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role.
0: I create the next situation, I create the, and I start acting it that way. I can act this way.
1: हाँ, see ना?
0: हाँ.
1: Fixed नहीं है. हर situation में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है. You can act this way. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब, as an actor, आपका role fixed नहीं है. आपके पास choice है कि
0: Which
1: आप
0: way?
1: किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं. आपकी script already
0: लिखी हुई नहीं है.
1: This is a very big thing. ये बहुत बड़ी realization हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे.
0: ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर आप थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
1: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सर.
0: इट्स अमेजिंग.
1: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइन्स पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
0: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
1: एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स यू कैन टेक द प्ले
0: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह, कंप्लीटली
1: डिफरेंट, बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस, माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
0: इनफैक्ट इससे पता क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
1: इन द प्रेजेंट.
0: यस.
1: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, प्रेजेंट में कैसे जीते, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, डू यू नो, आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब, आप बिल्कुल कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना है. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I am not needed there, because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही. Fixed किए हुए responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते. तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया रोल and my choice how to play. Par time hai, past or future ke bare mein sochna.
0: No, that's what I'm saying. Then, you know, like awareness mein phir hum active rahenge. Hum actually, you know, all hamari senses jo hai, wo tayar rahenge ki how can we innovatively do it.
1: Absolutely. To phir jo baat ho rahi hai bar bar, how to be in the present moment. You know, the question is, ki har ek ko ye pata hai ki past or future is waste of time and energy. Lekin how to do it? क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो, काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस, डिसीशन एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेट.

0: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो यू एंजॉय, आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन एंड येट यूल से मोर मोर
1: आई कैन ऊर्जा बची रहती है
0: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस, लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव, कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया, हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं, आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है, आई हैव टू प्ले इट. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड ओनली इन दैट वेरी फिक्स्ड रिजिड वे. एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बिकॉज स्टैग्नेंट हो जाएंगे. हम वही चीज यू नो सेम चीज रोज प्ले कर रहे हैं. तो आप लाइफ को जो इंजॉय करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, इंजॉयमेंट वाली फीलिंग, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना, मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए, यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर के कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाके,
2: हाँ मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं जनरली. अगर हम देखें
0: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो वी लुकिंग फॉर अ चेंज, लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. हर रोज कुछ नया करना है, हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. सी, हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं, कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे, फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नई हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूँ.
1: मैं नहीं हो जाऊँ.
0: हाँ, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वही सिचुएशन, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग
2: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस.
0: हाँ, वट एवर यू कैन,
2: अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड.
0: क्रिएटिविटी बट विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ
1: हैप्पीनेस,
0: सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन मेजरली हमने दो रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है. वन इज एट वर्क, वन इज एट होम. ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
2: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
0: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूं. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन में,
2: आई हैव टू क्रिएट दैट इमेज, यू नो आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस.
0: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूं. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई? आई एम द बॉस. नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस, ये मेरी पोजीशन है, लेकिन ये

0: मेरा रोल नहीं है. रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूं, लेकिन पोजीशन बॉस की है. कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूं, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूं. कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूं उन दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
1: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक मैं बहुत फियरफुल होता हूँ. मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. यू नो मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो
0: तो दैट इज द फियर. बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरमेंट कैसा होगा?
1: वेरी स्मूथ एक्चुअली.
0: वेरी लाइट. वेरी लाइट. एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूं, मैं मदर हूं सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
1: इन फैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं.
0: पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं.
1: अलॉट यू नो कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
0: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दिल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. वाई इज दैट नॉट माई रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन वो हंसेंगे भी नहीं खुल के. दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन और यही बना के रखना.
1: अच्छा ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी जरूरत है?
0: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ्स. क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजिशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था. तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा. वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे. बट नो, इट्स द सेम थिंग. आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज. एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे. क्योंकि आज आप देखो एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है. वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो वॉट समवेयर पेरेंट्स घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतनी फोन पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है. यू नो यू कैन एक्चुअली बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता.
0: Now this is creativity. तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है. नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी. उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील. लेकिन वो तभी होगा वेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग the role and I'm not playing it but I am creating the role. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है हाउ डू आई वॉन्ट टू क्रिएट माई रोल इन दिस सीन. तो आपको कैसे भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो यू स्टिल हैव अ चॉइस. इट्स अगेन गोइंग बैक टू दैट फंडामेंटल लाइन, आई हैव अ चॉइस. हर सिचुएशन में आई विल चूज हाउ टू प्ले द रोल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ट्राई, पोजिशन कॉन्शियसनेस, नहीं एक्टर कॉन्शियसनेस, कि मैं एक्टर हूं, आई एम प्लेइंग द रोल. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
1: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है ये.
0: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
1: यही मैं हूँ.
0: तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि यही मैं हूँ. तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता. आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट.
1: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, उस वक्त आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो.
0: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट. एंड डिटैच्ड होकर जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
1: अच्छा
0: ज्यादा होगा. जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है. देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव. इफ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूं, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं, यू नो, कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले लें. तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेम्बर, यस, प्लीज रिमेम्बर हु एम आई. आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस. सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड. पेरेंट इमीडिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर I am the parent. That doesn't mean कि हम rudeness आने दें या you know misbehavior आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक you know lightness relationship के अंदर, that's a part of the, you enjoy that relationship. लेकिन जहां हर relationship को उतना tightness से पकड़ा कि ये how could he talk to me like this, how could he behave with me like this, because who am I? आई एम दिस. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी.
1: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बींग
0: विद दोस पीपल. यस, एब्सोल्युटली.
1: आप उनसे करनी नहीं काट रहे होते बिल्कुल.
0: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी. इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन.
1: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. मेक इट क्रिएटिव, क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति. जस्ट गो एंड इनएक्ट इट द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे तो मैं ठीक से क्यों बात करूं, फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल. कल मैं सोचा कम ऑन, फॉरगेट ऑल दिस,
1: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माई सेल्फ. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. दैट इज क्रिएटिविटी.
1: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: ओनली माई परफॉर्मेंस. वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइंड, यू सी हाउ मच फन वी आर गोइंग टू हैव इन द होल डे.
1: ओह वंडरफुल. स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू फन.
0: स्पिरिचुअलिटी is a lot of fun.
1: Yes, that's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दे, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अब एक विद ड्रामा कुमारी में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद दामा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे आपणियां दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरीबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पादे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

जी हाँ भाइयों और बहनों, बिना का गीत माला में आप सभी का स्वागत है। ये पहला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, धीरे धीरे चल, फिल्म है लव मैरिज। इस गीत को बोल दिए हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और फिल्म में काम किया है देवानंद, माला सेना, अभी भट्टाचार्य ने। साल 1959 में आई इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हसनैन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा च स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का वी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: दस क